0: जहां खले कलगी तर तेर और प्रमोद तर पहुंचे तेर।
1: जदों जंग जित लिया फतेह पा लई जिथे कलगी धर महाराज धीरज धारी सतगुरु धीरज धार के खड़े ने उथे जा पहुंचे सारे।
0: सैदा बेग उतर है तरे गुर के चरण बंद ना करे।
1: सैदा बेग घोड़े तो थले उतरिया आके उन्हें सतगुरु महाराज जी नूं मत्था टेकिया।
0: बोले प्रभु उम्र बरकरार मिले सुखोब इन तकरार।
1: महाराज ने इस तरह का वचन किया कि लंबी उम्र हो।

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हूं चंगिया निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जा देना या मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई ओ सोहनी काठी पाओ ते ओदे गले दे विच जिहड़ियां हमेला हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ए तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मन के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।

0: महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा, एकदम घोड़े ने छाल जो मारी। सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है। इस करके सावधान रहे।
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए, सीतुरमाल संग बंद गए।
0: जदों दोबारा फिर घोड़े ते चढ़े, बांह विच कुछ पीड़ होई, झटका वज्या बांह नूं, फिर सेवक ने चिट्टे रंग का एक रुमाल

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सबूत पर दृष्ट पसारे अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम यह वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिरहवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनुख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बिसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे दोबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए
0: अगे जेड़े मारदे आउंदे सी ता के दौड़ के
1: कितक हते को मार हटाए
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने तोमर ते सेला ते सांग सोटी का फर्क है उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है इस प्रकार उन्हां दे अगे फल का फर्क है देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस खग मारे
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर भेरे पबारे
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे
0: बहुत दीर्घ मार मची ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗੈ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਾਨੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जय कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार
1: राज पाए किम कहिए तैसे
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो हे पहाड़िए हो राजे ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा
1: वधे तेज किम लह धरने
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने
1: ठहरे राज कौन कर करने
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा
1: बहुतन की किरत अलप करें किम
0: ए बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने कम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू
0: सारिया दुश्मनों के उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा
1: हान लाभ जाने इस बेरा
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा
1: वरत वरतारा जग जथा
0: जिमें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च
1: श्री मुख सुंदर ते कह तथा
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचने इस प्रकार कहे
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ जिवें असीं चाहुंदे आ उसे तरह की हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी
1: खाए गो खर्च लेंगो लाल
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लए गो लाल हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने खाए गो दो खा खर्च खखा ते ले गो तो लल्ला ते लाल इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी सरकै गो युद्ध माहे करै गो निहाल वो सरकै दे सस्से नूं लैणा ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार
0: खारी तो भाव खारा समुंदर उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आने का सार जंग करके लोहा खड़का के हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना खा लक्ष्मी तो लल्ला ਖਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋ ਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा में समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे

ऐसा महाराज ने भजन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहना सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए भई अमर छको दाड़ियां जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जिहा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इक्को ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी ये सारियां चीजां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच। अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग दे जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे दे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। ये साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, ये कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा, अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल् छड़ दो पर नहीं मानते, फिर भी कहें आह गल क्यों, आ किमें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहते जे सारे जने एक ही बचन मान लो उस विच ही भला है। महाराज वो केड़ा बचन कहते।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख अन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मानदे ही नहीं, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा है जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब

0: जिहड़े पांडे ने तीर्थां दे उत्ते जाके फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं उत्ते तीर्थां ते जाके दान देना है तो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे इन्हां नूं भी दान नहीं देना पांड्या नूं इतिहादिक वो पिछे जे नौवें पातशाह गए सी गया उत्ते जां होर ना स्थानां ते कहिंदे महाराज सरबंस दान करो महाराज की पालकी भी लै ली होर सारा कुछ ही लै लिया। महाराज दसवें पातशाह ने फिर सारिआं नूं हुण मना कर दिता है किते नहीं जाना होर ना कि उत्थे दान देना ना होर थां ना इन्हां तीर्थां ते जाके पांड्या नूं दान देना कहिंदे गुरु घर दे विच ही देना जो देना इस करके ये गल पक्की कर लो।
1: रहै एकांत प्रीत जन दूर मम विचार सो नित भरपूर।
0: तो साडे विचार गुरबाणी दे विचार इन्हां दे विचार करे एकांत रहे ते प्रीति रखे परमात्मा दे नाल।
1: सिख पुगावै मेरा सिख केस पेस ने मेरो ब्रिख।
0: इस करके सिख पुगावै मेरा सिख मेरा जेड़ा सिख है ना वो सिख नूं छकावे भाव गुरसिखां दी संगतां दी सेवा करे इसे प्रकार केस भेख जेड़े रखे हुए ने वो मेरो ब्रिख बिख तो भाव जहर रूप जिन्हां ने भेस ही केवल बनाया होया है वो तो जहर रूप है उन्हूं खवाउणा ते खाणा।
1: दोहेरा हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग।
0: हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग सो सकेस हुंदा सहत केसां दे जां केसां तो बिना मेरा होवे निसंग निसंग होके जिहड़ा मेरा बन जावे।
1: बामण सोई ब्यास सम दीवे दान उमंग।
0: तो वो जिहड़ा है ना केसा तो बिना वो जे केसा वाला बन जावे गुरु घर दा सिख बन जावे वो तां फिर ब्यास वर्गा बन गया ब्यास मुनि जी वर्गा बन गया क्योंकि उत्साह दे नाल कहिंदे असीं कुछ दे सकदे हां ऐसे जिहड़े गुरसिख बन गए होर सारा कुछ छड़ के।
1: कन्या देवै सिख को लेवै नै कुछ दाम।
0: सिख नूं कन्या देवे पर दमड़े ना लवे वेचना आदक दी क्रिया करनी फिर इसे प्रकार आ दाज दहेज आदक तो ता सतगुरु ने मना ही कीता है।
1: सोई मेरा सिख है पहुंचे लै मम धाम।
0: ओही मेरा सिख है ओ लै के मेरे धाम अपड़ेगा भाव मेरे सचखंड घर दे विच आवेगा ओ की लै के आवेगा जी कहिंदे पुन्न ओ पुन्न कट्ठे करेगा जेड़ा बंदा चंगे कर्म करेगा साडे दसे राह ते चलेगा।
1: सरवर गुग्गा पीर जे जोगी भूत ना सेव।
0: एक सुल्तानीए पीर सरवर ने जेड़े एक गुग्गा पीर जेड़ा है एक जोगी जेड़े ने एक भूत इन्हां दी सेवा नहीं करनी ऐवें कि जाके उत्थे मत्थे टेक लो थां थां दे ए बड़ियां तुच्छ जिहियां चीजां ने जिन्नियां गिणियां ने इन्ने ओह नहीं है कि जिन्हें गुरु साहब के बराबर किथे चले जाणगे। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े पूर्ण भाई सिंह ने ना गुरु दे उन्हां दे ते इह सारियां चीजां दास ने सेवादार ने हथ जोड़ के उन्हां को खड़दे ने आ के फिर जे सिंह हो के उधर नूं तुरिया जावे महाराज कहिंदे ओह भी साडा फिर सिंह नहीं है।
1: गुर पूजै सब काम मैं पहुंचै मम घर एव।
0: महाराज कहिंदे सारे कम्मां दे विच गुरु साहब दी ही पूजा करनी है सारे कम्मां दे विच सहज पाठ श्री अखंड पाठ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनना यह गुरु घर दे कार्ज आपां करदे ने पहला महाराज नूं मनाउणा तरीके नाल विधि नाल विधि तो भाव के जिवें आपां पाठ करदे हां पाठ करन वाले भी आए छेती नाल भी प्रकाश है आए बाहरों पता नहीं कित्थों आए ने आ किताबां बह गए हम भी पाठ करके आए गुरुद्वारे वह विधियां तां तुहानूं सिखणियां चाहीदियां सारिआं नूं ते इस प्रकार नाल महाराज जी तां रोकदे ने कई चीजां तों कि ए जिहड़े कर्म ने आ करने नहीं। इस तरह केसी इशनान दा बहुतिआं नूं पता केसी इशनान चौथे दिन तो महाराज का हुक्म ही है एतवार बुधवार रख लो दो दिन रख लो मैं करना केसी इशनान करना जां कोई हफ्ते विच इहे दिन रखो तो साडे जिहड़े केसी इशनान ही दस दस दिन नहीं करते हैगे तो उदा फिर विषय विकारां च प्रवृत्त हो जाणा वह कई चीजा देखण वालियां हुंदियां ने इउं जिहड़ियां अपने वल्लों ही कमियां हुंदियां ने पाठ करन दे विच ताइयों आपां नूं फल की प्राप्ति नहीं हुंदी ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਲ ਛੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੋਵਰ ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੂੜਾ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ ਮਰਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਆ ਵੀ ਚੂੜਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੂੜਾ ਛਕੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ

0: सुपते निसमय सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लै के आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी क है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने या नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना, उन्होंने जवाब देने ने। उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल, दसना करिए पवित्र गल के आखो।

0: वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया इस तरीके दे नाल कि जिहड़े अपने भाई गुणवान बंदे ने कवीशर ने नाना प्रकार के जिहड़े पंडित लोग ने विद्वानी करते ने कथा करन वाले ने अज इन सारिया नूं बुला के लियाओ इन्हां कोलों अज कुछ प्रश्न पुछने ने
1: सभियन को हकार लियाओ जय जय दीता सिदाओ
0: इन्हां सारिया नूं लैके आओ जिथे जिथे भी डेरे ने इन्हां दे टिकाणे घर बार श्री आनंदपुर साहब दे विच हरेक नूं बुला के लियाओ अज
1: सुन कै सब तत्काल बुलाए
0: सुन के उस वक्त ही सेवादार चले गए थावां थावां ते सारिआं नूं बुला लिआंदा
1: तिनको देह नाम बताए
0: कवि जी कहिंदे कुशक दे नाम जिहड़े मैनू पता है उन्ने क मैं दस रहा हां
1: केशो दास पुत्र कुवरेश
0: सो इह केशो दास दा पुत्र कुवरेश आया है
1: द्रोण पर्व जिलकीन अशेच
0: सो जिने महाभारत दे विचों द्रोण पर्व सारा जिहड़ा पर्व है वो भाषा दे विच टीका कीता है
1: गुणिया सुखिया बल्लभ आयो
0: भाई गुणिया भाई सुखिया भाई बल्लभ ये भी तिने आए हैं
1: ध्यान सिंह गुर दर्शन पायो
0: भाई ध्यान सिंह जी भी चल के आए ने इन्हां ने भी गुरां दे दर्शन पाए
1: इत्यादक पहुंचे कुछ और बंदत भे सोडी सिर मोर
0: इत्यादक कुछ होर भी आए ने मुखियां दे नाम लै ले ने जां जिन्ने क पता लगे सोडियां दे श्रोमणी सतगुरु महाराज जी नूं इन्हां ने आके मत्था टेकिया
1: सादर बैठे सभा मझारे
0: सहत आदर दे आके सभा दे विच बैठे हन
1: साप्रत श्री प्रभु गिरा उचारे
0: जिन्ने जने आके बैठे सन सियाणे विद्वान पंडित गुणी जन उन्हां प्रति गुरां ने इस तरह वचन कीता है।

0: जल असित असित हुंदा अपवित्र ते मैला पानी सो ये जड़े पानी ने जिवें कोई समान है हुण कूकर ने पानी जूठा कर दिता कई लोग कहने चलो इहदा काला जूठा हुंदा है आपां पानी पी लैंदे इहदा महाराज कहने ऐसा पानी कदे भी नहीं पीना कूकर आदक दा जूठा एक वो बंदे जिहड़े अपवित्रता दा काम करदे होण खास करके इहनां विच हुण अमृत छकिया होया बंदे दा ते बंदे अपवित्रते वाले बहुत काम करते ऐसे लोग गंदगी आदक का काम भी करते हैं फिर उत्थे तो अपनी पवित्रता नूं भंग नहीं ना होण देना इस करके महाराज ने कहा देखो भाई अपवित्र पुरशां दे नाल पानी पीना उन्हां नाल बैठ के रोटी खानी ये माड़ियां गल्लां ने बाकी जिहड़ा थोड़ा जिहा पानी खड़ा होवे उत्थों भी नहीं पीना पानी क्योंकि पुराने ग्रंथां च लिखिया सवा मन तो वध पानी जिथे खड़ा वो पानी सुच्चा मन्निया जांदा बाकी थोड़ा पानी जिथे खड़ा होवे क्यों हुण तां टैंकियां टूटियां ट्यूबवैल नलके बहुत ने यह पहला नहीं सी हुंदा पहला किते ही खूह हुंदा सी जां लोक आम तौर ते छप्पड़ां च नहाउंदे सी यह खड़े हुए पानी च नहाउणा उत्थे करके इस करके मना करदे सी महाराज घट बंधा घड़े विच देर दा पिया होया पानी जिहड़ा उत्तों ढकिया होया वह मुश्क मार जांदा किरम पै जांदे ने वह पानी नहीं पीना मैला पानी नहीं पीना इहां पानी वी ध्यान नाल पानी पीण तों नहीं रोकिया पर कहिंदे पहलां पानी देख तां लओ जे पानी तुसीं देखोगे नहीं ते पानी है कैसा इस करके भाई पानी भी बड़े
1: सो इस करके सच्चे पातशाह कहने ये जिहड़ियां सारियां चीजां ने ना ये अयोग ने क्योंकि वेदां पुराणां विच भी कहा है कि जिहड़ा बंदा शंकर वर्णिया है मलीन है मैला है तंबाकू की वरतों करदा है शराब की वरतों करदा है मीट आंडे आदक की वरतों करदा है माड़ियां चीजां सारियां जिहड़ा बंदा खाई जांदा है
2: श्रोता सुन नारक पशु अनकुलीनी जोग
1: सो इस करके कहिंदे ने जिहड़ा श्रोता है श्रोते नूं भी नुकसान है ते कथन करन वाले नूं भी नुकसान है तां ते कहिंदे ने जिहड़ा ये हर बंदे नूं नुकसान ही नुकसान हुंदा इन्हां गल्लां दे विच क्योंकि कई चीजां आ जांदियां ने खुद बंदा माड़ियां चीजां खांदा पहलां भी आ चुक्या इशारा दुबारा फिर कहिंदे ने हुण कई बंदे अपने पंथ विच एक पंथ विच अपने इन्ना वधिया कथावाचक होया इन्ना वधिया कि लोग उहनूं सुणदे ने अज भी उहदियां कैसटां सारिया देशां चलदियां ने हुण तां चढ़ाई करके उहनूं काफ़ी साल हो गए उहदियां किताबां भी ने छपियां होईयां उह बंदा बेहद शराबी सी जिथे जी करे पी के डिग पैंदा हुंदा सी पर लोग हले भी सलाही जांदे ने उहनूं पर वह बंदे का की प्रभाव पैना किसी बंदे उत्ते जिहड़ा आप ही डिग्गिया फिरदा इस करके इत्थे सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा बंदा धार्मिक है ना जिन्हें खास करके उपदेश करना है वह बंदे का अपना खाना पीना बहुत ठीक होना चाहिए जे उहदा अपना खाना पीना माड़ा फिर संगत नूं भी गलत पासे ला सकदा किसी बंदे नूं गलत भी कह सकदा वह कह सकदा कोई गल नहीं जो मर्जी खाओ पियो मौजां करो इस तरह दुनिया नूं गलत मार्ग उत्ते पा सकदा ते उह बंदे दा माड़ा ही माड़ा असर पै सकदा हर वक्त
2: पंथ रचियो मैं धर्म हित पूजा दान ना खाए
1: महाराज कहने मैं पंथ रचिया धर्म वास्ते धर्म नूं कमाउण लई ना कि आपां ने पंथ बनाया भी जिथे मर्जी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जिन्ने रुपये आए खा पी छड़े मौजां कर लिया कहने मैं इस करके नहीं बनाया यह भी जिन्ने मर्जी जिथे निशान साहब ला लिया जिथे जी करिया प्रकाश कर लिया जिथे जी करे ए पैसे कट्ठे कर ले ते ओ खा ले कहने ये तो जहर खाने वाली गल है इस करके पूजा का धान नहीं कदे खाना खालसे ने
2: लोभ बंद मानत नहीं शुकर जोगी पाए
1: तो इस करके जेड़ा बंदा बहुता ज्यादा लोभ दे विच बन्निया पिया है तो उन्हां बंदियां दी गल नहीं मननी नहीं तो कहने शुकर आदिक की जूनी विच बंदा चलिया जांदा है जेड़े बंदे लोभ दे विच पए होए ने ना उन्हां बंदियां ने मगर ज्यादा नहीं जाना
2: दिवस रैन गुर चरण भज कुल की कर है कार
1: रात दिन तुसी एक काम करना सारिया ने सतनाम श्री वाहेगुरु
2: साहिब जी
1: सतनाम श्री वाहेगुरु
2: साहिब जी
1: ये जिहड़ा काम है करना है ते कुल दे जिहड़े काम ने अपने घर दे कारोबार ने गृहस्थियां ने करने ने

0: धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है वह तो हुण खीर समुंदर तो भी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कह के संदेश जो,
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीरति है यह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीरति तो बहुत, असीं किवें कह सकदे आ? तुहाडा तो जस पहला ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीरति लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है संदेशा लैके मेरा, तो इहनू तुसीं माण आदर बख्शना।
1: जो पई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राख्यो निट मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सरकार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा,
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: सुन सुन कर सुजस बडेरा,
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन के ने, छंद बंद सुंदर गत लीने।
0: ए करण परब इहदी पाखा जिहड़ी है भाव देश भाषा विच बोली विच, ए अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।

0: चरण समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,

0: वक्त मूल मंत्र का अभ्यास करते रहो।
1: छत्ती ठत्ती जाप कर लाख अर्ध ते लाख।
0: हुण इह जिन्ना कु कारज है कम देखिया जांदा कम है इन्ना कम है। 5000 मूल मंत्र है, 25000 का जाप है, 36,036 अखरा भाव पुरातन समय विच 36 अखरा नानक होसी भी सच तक है, 25 अखरा जिहड़ा उह जाप गुरप्रसाद तक है। इन्हां चीजां नालों हट के आपां इको ही गल करिए कि मूल मंत्र का जिहड़ा अभ्यास है जिहड़ा पंजां प्यारे ने बख्शिश किया है इहदा जे चलो जे तुसीं इह कहो भी इह तां बहुत ज्यादा सत हुंदा नहीं इन्ना तां फिर घट्टो घट्ट 5-6 माला रोज कर देनिया चाहीदियां जां 11 माला जां फिर जपजी साहब दे 11 पाठ जां 5 पाठ। तो इस तरह है कि साडियां जिहड़ियां 5 बाणियां तां बहुत अच्छी गल है, 5 बाणियां तां पढ़दा ही पढ़दा सिख। पर महाराज दे कहण दा भाव है कि कोई सवास जिहड़ा अपना खाली ना जाण दिओ, हर सवास दे नाल

जसरी मन गायल जो सखी है तेरो अवसर बीतो जात है गयो मान लय मेरो संपत रत धन राज सो हत नहीं लगायो काल फास जब कल करी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे काज जगारियो पाप करत सुखच्यो नहीं ने गर्भ नवारियो जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई जे विद गुर उपदेसे ध्यान दियो जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गो धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन।